ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि। तदनुसार 16 मई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए

0: डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मोन को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे

0: वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग एक साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्च ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी यह परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार

0: का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जंक्शन मस्जिद लगा रास्ता नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड दुईटा रिवि हल्का हल्का ट्रैफिक दिखाई आसे टीसीपी प्रलयगिना राजू पॉइंट मस्जिद लगा रास्ता नॉर्थ बाउंड तो हुए मॉडरेट ट्रैफिक दिखाई आसे किंतु साउथ बाउंडे हल्का ट्रैफिक दिखाई आसे अलग रास्ता लबले इच्छा आसे कोले माने आपनार खान लब पारे टीसीपी परा लईगिना राजू पॉइंट नहले बा बक्स काटिंग परा लईगिना एनएचएके और सेंसस पॉइंट राजू पॉइंट परा लईगिना सेंसस पॉइंट मजत लगा रास्ता नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड दुईटा रि हल्का ट्रैफिक दिखाई आसे हाईस्कूल जंक्शन परा लईगिना सेंसस पॉइंट और एनएचएके जंक्शन परा लईगिना सेंसस पॉइंट মাজতেটো হলে নর্থ বাউন্ড আর সাউথ বাউন্ড দুইটা দুইটা রাস্তা দিবি হালকা হালকা ট্রাফিক দেখাই দিয়েছে এই থাকিছে রিয়েল টাইমতে ট্রাফিক আপডেট শুনে থাকা সববিলাক আপনার এখন প্রোগ্রাম লতে জুড়ি থাকিবি আকবি আনি দিয়া হব রিয়েল টাইমতে ট্রাফিক আপডেট।

0: हेलो
1: हेलो दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: केसरी सिंह
1: जी दीदी
0: राजपूत
1: जी
0: मध्य प्रदेश से।
1: जी हाँ जी हाँ
0: ओके, आपको स्वागत है प्रोग्राम पे।
1: जी, वेलकम दीदी, थैंक यू।
0: जी बोलिए, आज कौन सा गीत सुनने के लिए आपको सोच रहा है, मन में क्या चल रहा है ये?
1: आज आप सुनवा दीजिए, मूवी का नाम है पति
0: बोले पत्नी
1: पत्नी और तवाइफ।
0: और तवाइफ।
1: पति पत्नी और तवाइफ।
0: ओके, पति पत्नी और तवाइफ। ओके, इसमें कौन सा वाला गीत सुनना है आपको?
1: ये है तुम कहना ना ये किसी से।
0: ओके, मैं बोल देती हूँ आपको। तेरी मोहब्बत तेरी जवानी, एक दूसरे से होना नहीं, कहना तुम ये किसी से, मेरी चांद
1: जी जी
0: परसी।
1: कहना, यही
0: ओके
1: कहना।
0: ओके, ठीक है। अगर आप लोग गाने का बोल सही नहीं बताएगा तो मेरे लिए भी बहुत तकलीफ हो जाता है, तो ठीक है। और किसी को डेडिकेट करना है आपको?
1: जी सबसे पहले आप सुनेंगे
0: जी, मैं तो बजा रहा हूँ,
1: और हमारे
0: सुनेगा।
1: राम बाबू शर्मा जी हैं और मांगीलाल चंदेल जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं और कैलाश राजपूत हैं और अविनाश तेली जी हैं, आशुतोष जी, संगीता देवनाथ जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, लोकेन वर्मा जी हैं और जितने भी लाइव सुन रहे हैं सबके लिए रहेगा।
0: ओके, ठीक है। केसरी सिंह जी, आपने कॉल किया, आपने जो गीत सुनने के लिए मांग किया है वो भी है, आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। और
1: ओके,
0: कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: आपको भी रिसीव करने की बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः से राधे राधे।
0: वेलकम वेलकम। उन्हीं जगह सब बिलाक प्रोग्राम थे। बार दूसरा गीत दिया से पति पत्नी और तवाइफ फिल्म की गीत गाए से सलमा आगा और मोहम्मद अजीज लगा वास्ते। और ये तो गीत होने बोले मन हुई ना मध्य प्रदेश पर कॉल करी कि ना अनुरोध करी से केसरी सिंह राजपूत। और तार पर तार लगा किसुमान साथी बिलाक के डेडिकेट करी कि ना से साथ साथ शुनी थका सब बिलाक की भी, तो सुनब और एन्जॉय करा हम।

0: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी से 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Yes, all is well, all is well. और कैसे हैं आप? आप सब हैं मेरे साथ अपनी दोस्त आरती वल्होत्रा के साथ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, और मेरा वाला सॉन्ग में सबसे पहले all is well. जी हाँ, ये सॉन्ग उन सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके दोस्तों को, उनकी फैमिली को, उनके चाहने वालों को डेडिकेटेड है जो आज इस एक टफ सिचुएशन के साथ गुजर रहे हैं. वो टफ सिचुएशन है उनके जो नीट के एग्जाम्स के साथ जो थोड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन गवर्नमेंट अच्छी बात है कि बहुत जल्दी क्विकली सारे स्टेप्स उठा रही हैं, दोषियों को पकड़ा जा रहा है, नई डेट भी रिजल्ट की अनाउंस हो चुकी है. आई अंडरस्टैंड एंड हम सभी समझते हैं इस चीज़ को कि प्रेशर बहुत है, लेकिन क्या करें, जो है सो है, वो जो सामने है उसको झेलना तो पड़ेगा ही. और कहते हैं दोस्त के फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी.

आते हुए सब गम भुलाना है जिंदगी। जीत का जश्न तो दोस्त हर कोई मना लेता है, हार कर खुशियां मनाना भी है जिंदगी। और सबसे अच्छी बात है अभी तो हम हारे नहीं, हमारे पास दूसरा रास्ता है और हम लोग इसे करके दिखाएंगे। आप हैं अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ मेरा वाला सॉन्ग, अपने पसंद का सॉन्ग में चलाई चुकी हूँ, डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अपनी फरमाइश भेजने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9868107070 9868107070। वन मोर कैलाश खेर की वॉइस में आप

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहते हैं दोस्त कि तेरी मुस्कान पर जन्नत भी कुर्बान है, तेरी मुस्कान पर जन्नत भी कुर्बान है, तुम मेरे साथ हो मुझे इसी बात का अभिमान है। एंड वेल, हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और देखिए कितना अच्छे लगते हैं, इतने सारे मैसेजेस करें। अब मैं मैसेजेस लेने वाली हूँ, फरमाइशें गीत भी चलाऊंगी, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा बढ़िया वाला। जिसके भी फरमाइश पूरी होगी, जिनके भी सॉन्ग्स मैं प्ले करने वाली हूँ, वो सब मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। बोले फिर ना हमसे तो आप चलवा लेते हो, हमें तो थैंक यू बोलते नहीं, हमें भी तो अच्छा लगता है ना, थैंक यू बोलना चाहिए। ओके वेल, आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग और आपकी फरमाइशें हैं मेरे पास 9868107070। उनके लिए जिन्होंने अभी रेडियो को ट्यून किया है, आप मुझे अपनी मैसेजेस भेज सकते हैं। एंड वेल हम शुरू करते हैं। नमस्कार जी, तेरे नाम का गाने के बोल है तुमसे मिलना, ये सलीम अख्तर रेशमा बेगम अलीगढ़ से बोल रही हैं। एंड यार डेफिनेटली थैंक यू सो मच, ये किस बात के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत बड़ा मैसेज है, पढ़ नहीं पाएंगे। पंकज अमरावती महाराष्ट्र, गुड मॉर्निंग। आरती मल्होत्रा जी, और इन्होंने खिलाड़ी फिल्म से सुनना चाहे, वादा रहा सनम होंगे जुदा ना हम, बिल्कुल हम भी जुदा नहीं होंगे आपसे, और देखते हैं जी आपकी फरमाइश पूरी होती है कि नहीं। गुड आफ्टरनून लाइक लक्ष्मी, अरविंद, निशा, प्रमोद एंड मम्मी पापा, इन्होंने सलामी फिल्म का मिले तुमसे पिछड़ के हम की सॉन्ग की फरमाइश की है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, इन्हें कोई भी नया पुराना गाना सॉन्ग सुनवा दीजिए। इन्होंने कहा है सरस्वती चंद्र, गाना छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए मुनासिब नहीं आदमी के लिए। बहुत ही खूबसूरत गीत है और मैं पूरी कोशिश करूंगी दिग्दर्शन जी, अगर मुझे ये सॉन्ग मिला तो डेफिनेटली आई प्ले इट। एंड ये कौन है, नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से करें, गुड आफ्टरनून, फिल्म का नाम फाइटर, गीत के बोल दिल आ रहा है या किसी पर जा रहा है। ओके एंड ये हमारे दोस्त है सौरभ बने जा, ओके दोस्त मेरी कोई सॉन्ग एज यूजुअल, भाई आप तो रमता जोगी हैं, आपकी तो कोई फरमाइश होती ही नहीं कभी। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले से कह रहे हैं कि बेदवान गांव के फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, गाने के बोल आया आया अटरिया पे कोई चोर आया, और नौशाद अक्रम चौधरी, आतिफा चौधरी, इमराना चौधरी, राजीव नगर मंडोली 93 से मूवी नेम प्यार किया तो डरना क्या सॉन्ग सुनना चाहते हैं, और परदेस मूवी का सॉन्ग आई लव माई इंडिया, कुणाल वर्मा अम्बाला कैंट से सॉन्ग की फरमाइश आई है। साथ ही मैडम जी नमस्ते, कुलारा रोड भोपाल से रामबाबू मालविया, मनीष मालविया फिल्म दीवाना से गाना तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। वेल अभी जिनकी फरमाइश पूरी हो रही है वो है खिलाड़ी फिल्म से वादा रहा सनम, आप सभी के लिए अभिजीत सिंह।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ एंड भाई आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर। वो कहते हैं किसी ने हमें बड़ी प्यारी सी एक लाइन लिख के भेजी है कि तुम्हारी मुस्कान किसी तलवार से कम नहीं, कोई बैर रखे तुमसे किसी में दम नहीं। That's so sweet of you. इसके साथ ही अपना नाम भी लिख देते दोस्तों, अच्छा रहता। चलिए एनीवेज, और देखिए मैंने दो तीन फरमाइशें पूरी की है एंड आई होप कि आप मुझे ओके एंड आपको मेरा नमस्कार। जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, आपका मैसेज हम पढ़ चुके थे। ओके, गुड आफ्टरनून। मेरा वाला सॉन्ग में मेरी अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। ये किशन वंजाने, नीलम स्वाति कह रही हैं, आदाब। किसी भी गीत पे हमारा नाम शामिल कर लीजिए। ये फारूक अली खान, फैजी फरहाज, फरहीम, फरहान, फरिया, ताहिर, अरे बापरे, इन सभी ने ये फरमाइश की है। राहत और गज़ल, निहत कौर बिजनौर यूपी से, राज मूवी का सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं। आप हमेशा राज फिल्म का ही सॉन्ग क्यों सुनना चाहती हैं, ये क्या राज है। जैद और हुडा गाजियाबाद यूपी से, नदिया के पार मूवी से, कौन दिशा में लेके चला रे बतूरिया, ये सुना दीजिए। बिल्कुल पक्का पक्का पक्का, अगर मुझे मिला तो मैं जरूर सुनाऊंगी दोस्त। रिस्पेक्टेड आरजे, किसी भी सॉन्ग में मेरा नाम शामिल कर दीजिए। तेरी यादों का दिया दिल में जलाए बैठे हैं, रात की तन्हाइयों को भी सजाए बैठे हैं। लोग कहते हैं भुला दो उस वक्त के साथ, हम तो हर सांस में आपका नाम बसाए बैठे। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। मोहम्मद सरफराज आलम, जोकी हाट, दर्शन बाजार, अररिया, बिहार से ये हमें बोला है। एंड अब हमारे कौन से दोस्त हैं, दीपक कुमार क्या कह रहे हैं, नेम दीपक कुमार, अमृतसर पंजाब से, गाने का नाम मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। ओके, पनघट पिछेड़े। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, थैंक यू सो मच आरती जी। देखा, मैं इसी का वेट कर रही थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सच्ची बोलो, किसी का एक सिर्फ एक शब्द है शुक्रिया, थैंक यू, एक ग्रैटिट्यूड फील करना। एंड बिलीव मी, जब भी आप ग्रैटिट्यूड के भाव में आते हैं तो पूरा यूनिवर्स जो होता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है आपका। थैंक यू सो मच सर, एंड इट्स माई प्लेजर। तेरे नाम भाई, तेरे नाम, तेरे नाम, बाप रे। आप मुझे वॉइस मैसेज भेज रहे हैं सात्विक भाटिया जी, जो कि मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। हम दिल दे चुके सनम की इन्होंने फरमाइश की है। और रंजीत मुकंदरपुर दिल्ली से, मुझे गाना सुनना है फिल्म पापा कहते हैं, प्यार में होता है क्या जादू। ओके, गुड आफ्टरनून। मनमोहन सिंह जिला मंडवा हसनपुर गाँव से, मेरा वाला सॉन्ग, ये वाला सॉन्ग मेरी बीवी सोनम को डेडिकेट करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है धड़कन, तुम मेरी धड़कन में रहती हो। ओके जी, एंड थैंक्स आरती जी मेरा वाला सॉन्ग बजाने के लिए। मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम जवाहर कैंप से, अरे थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे। एंड प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमें कह रहे हैं हमारे दोस्त। और अब हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन उछलने लगी है। प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा मैसेज भी शामिल कर लीजिए। सभी सॉन्ग एक से बढ़कर एक सुनवा रहे हैं आप। चलिए अब किसकी फरमाइश पूरी होगी खुद मुझे भी नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी दोस्त की तो जरूर होगी। और माचिस फिल्म से, छोड़ आए हम वो गलियां।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

राम जी की कृपा से हम मिले जी हाँ, लेकिन क्या करें, राम जी की कृपा से समय तो रुकता नहीं है, समय बढ़ता चला जा रहा है। एंड वेल, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी कह रहे हैं शांति नगर सोनीपत से, रिस्पेक्टेड प्रेजेंटर जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी सैटरडे, गुड आफ्टरनून, ऑन आर रिक्वेस्ट प्लीज प्ले द न्यू सॉन्ग। ओके, सड़क फिल्म से इन्होंने सुनना चाहा है। ओके, अब समय तो कम रह गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का पक्का पक्का। अब आप मुझे वॉइस नोट भेजेंगे तो मैं क्या करूँगी। दानिश खातुली कह रहे कि आरती मैम कैसी हैं आप, वेलकम टू द शो। मैम मुझे फिल्म तारीख कही, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सॉरी सर, लेकिन वैसे भी अब टाइम कम रह गया तो शायद मैं आपकी फरमाइश पूरी कर भी ना पाऊँ। सुनीता शालीमार बाग विवाह मूवी का सॉन्ग सुनने की बात कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच स्वीट आरजे साहिबा, थैंक यू सो मच। एंड कविता उत्तराखंड से, सिर्फ तुम का सॉन्ग, एक मुलाकात ज़रूरी है। एंड मैडम जी, मेरी पसंद का सॉन्ग एक महीने से ज़्यादा हो गया, आपने अभी तक नहीं सुनवाया, निवेदन है मेरी पसंद का सॉन्ग फिल्म दीवाना से सुनवा दीजिए। तो आपके लिए खुशखबरी है जी, थैंक यू, तैयार कर लो, क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग दीवाना से ही है जो मैं चलाने वाली हूँ। वेरी नाइस सॉन्ग फ्रॉम माचिस मूवी फ्रॉम अयांश गुप्ता एंड गोरखपुर उत्तर प्रदेश, रियली इंजॉय, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच आरजे आरती जी, शो में बहुत कम आती हैं आप, नहीं आरजे क्या, नहीं जी मैं तो बहुत पुरानी हूँ, बड़ा पुराना रिश्ता है अपना आकाशवाणी से, हाँ थोड़ा बहुत कभी हो जाता है ऊपर नीचे टाइमिंग्स का। मोहम्मद सरफराज आलम और ये जोकी हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से कह रहे हैं। तो चलिए, अब आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं, कई लोगों ने थैंक यू बोला है, कई उन्होंने फरमाइश दी है, कई मुझे कह रहे हैं कि भैया हमसे क्या दुश्मनी है, तो आपसे कोई दुश्मनी ही नहीं है सर, बस समय की कमी है। और नेक्स्ट फरमाइश मैं अपने दोस्त की ज़रूर पूरा करूंगी दीवाना फिल्म से। उससे पहले बता दूं कि राजेश कुमार के साथ इसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आशियाना, मनीष आजाद लेकर आएंगे रेडियो डॉक्टर, और अल्फा जैन में रहेंगे राकेश कुमार ही आपके साथ सैटेलाइट पे। मनीष आजाद के साथ सुनिए क्या है सिटी में हलचल। तो फिलहाल यानी मुझे आरती को दीजिए इजाजत, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।

जाती हैं कि ये करना है वो करना है। कई बार आपके हिसाब से छुट्टियां समय पर आ जाती हैं, लेकिन कई बार थोड़ी लेट हो जाती है। पर हाँ, ये है कि मई का महीना आश्वस्त करता है कि हमारी जो भागम भाग वाली ज़िंदगी है ना, एकदम दौड़ भाग वाली, उसमें थोड़े से फुर्सत के पल हमें मिल सकते हैं, वो पल जिसमें हम बहुत सारी योजनाएं बना सकते हैं, और उन योजनाओं को सिर्फ बना नहीं सकते हैं बल्कि अमली जामा भी पहना सकते हैं, यानी कि उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये जो समय है, यानी कि गर्मियों की छुट्टियां, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपको भी लगता है कि कुछ चीज़ है, आप बता सकते हैं कि क्या खास किया जा सकता है, क्या खास करना चाहिए, या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ साथ, दोनों के साथ साथ, ये किस तरह से गर्मियों की छुट्टियां और बेहतर हो सकती हैं, तो वो भी आप बीच में हमें अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हम आपके स्वागत के लिए आप तक पहुंचा रहे हैं ये गीत, और इस गीत के बाद हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि ये जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, वैसे तो आप और हम सभी लोग जानते हैं कि कितनी खास थी हमारी भी गर्मियों की छुट्टियां। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कितनी खास हुआ करती थी, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे ऐसे काम हम करते थे जिनको आज सोचते हैं तो मुस्कुराते हैं, उन पलों को याद करते हैं और उनमें खो जाते हैं।

कितनी हसीनी है दुनिया, और इस दुनिया को देखने के लिए भी तो आपको समय निकालने की जरूरत है ना। जब आप जाएंगे, देखेंगे, करीब से महसूस करेंगे, तो पता चलेगा कि ये दुनिया वाकई में कितनी हसीन है, कितनी खूबसूरत है। और वो मौका देते हैं गर्मियों की छुट्टियां। अभी इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि गर्मियों की छुट्टियां जब शुरू होती हैं तो बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं, कोई घूमने की योजना बनाता है, कोई दिन भर खेलने की, तो कोई बस सोचता है कि आराम ही किया जाए। ये छुट्टियां केवल समय बिताने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का भी एक शानदार मौका देती हैं। तो आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट और पेरेंट मिलकर गर्मी की छुट्टियों को यादगार और उपयोगी बना सकते हैं। अब जरा एक यूं ही एक दृश्य की कल्पना कीजिए आप सभी कि सुबह के 10 बजे हैं और बच्चा जो है मोबाइल पर गेम खेल रहा है और माँ बार बार कहती है ये थोड़ी देर किताब भी पढ़ लो। बच्चा जवाब देता है मम्मी छुट्टियां हैं अब तो आराम करने दो। और ये स्थिति लगभग हर घर में देखने को मिलती है। लेकिन अगर यही देखें हम कुछ अलग नजरिए से और जो माँ है बच्चे से कहे कि चलो रोज 1 घंटा कुछ नया सीखते हैं और फिर साथ में आइसक्रीम खाने चलेंगे या फिर कुछ ऐसा जो बच्चे को पसंद हो, तो शायद जो पढ़ाई जो है वो बोझ नहीं लगेगी और जो छुट्टियों में बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा रूटीन से हटकर कुछ करने की सोचते हैं। और ये मौका भी होता है कि आप करवा सकते हैं, यानी कि जो सुबह सुबह की भागम भाग होती है एकदम कि हाँ सुबह स्कूल जाना है, सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चे तो थोड़ा देर से उठ जाते हैं लेकिन हाँ जो माता पिता है वो पहले से ही उठकर बहुत सारी तैयारियां करने लगते हैं टिफिन के लिए ये वो, यानी कि 10 तरह की तैयारियां होती हैं। लेकिन ये वो मौका होता है कि आपके पास पहले से ज्यादा समय होता है और उस समय का इस्तेमाल कैसे करें, इसी पर तो हम आपसे बात करना चाहते हैं और उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपनी इस बातचीत को और हम आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल समय एक और गीत आगे बढ़ाएं यानी कि आप तक पहुंचाएं, और वो गीत है ये।

0: हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
3: पता का चाय गजब का स्वाद।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी कर

है सलाम इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है आशियाना, मैं हूं आपके साथ राजेश। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम आशियाना में कि कैसे हम गर्मियों की छुट्टियों को और बेहतर बना सकते हैं, क्या खास किया जा सकता है। तो खास तो बहुत कुछ किया जा सकता है और उसकी प्लानिंग्स भी हमारे बहुत सारे साथियों ने बना ली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है, और अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो फिर चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं हमारे लिए, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये समय, यानी कि जो गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं, ये समय खुद को पहचानने का मौका भी देता है। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, किसी को संगीत पसंद होता है, किसी को चित्रकला, तो किसी को खेल में ज़्यादा ये कहिए कि उसकी दिलचस्पी होती है। मान लीजिए कि एक बच्चा अगर छुट्टियों में चाहता है कि वो गिटार सीखे, शुरू में वो सिर्फ समय बिताने के लिए सीखता है, लेकिन धीरे धीरे वही उसका आत्मविश्वास बन जाता है जब उसको आने लगता है। यानी कि ये जो समय होता है ना, तो थोड़ा सा शुरू शुरू में किसी भी काम को हम जब करते हैं तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हम थोड़ा और बेहतर तरीके से थोड़ा और समय देकर उस काम को निरंतर करते हैं ना, तो धीरे धीरे जब वो हमें आने लगता है तो फिर हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। और ये गर्मियों की छुट्टियां इस तरह के कामों के लिए बहुत ही ज्यादा आदर्श होती हैं, इसलिए छुट्टियां बच्चों की रुचियों को पहचानने और उन्हें निखारने का सबसे अच्छा समय है। बस जरूरी ये है कि जो भी हम प्लान करें उसको ये ध्यान में रखें कि हाँ, जो हमारे दूसरे प्लान्स है वो प्लान्स कहीं उस प्लान पर हावी ना हो जाए, हम उस प्लान को करके उसको पूरी तरह से अमल में लाए, और धीरे धीरे जब हम देखेंगे कि लगातार हम उस कार्य को कर रहे हैं तो एक नई आदत, एक नई चीज़ हमारे अंदर विकसित होती है। और कहते भी हैं कि जब हम कोई काम करते हैं, अच्छी चीज़ है, हमें सफलता की ओर ले जाती है।

ये जो तू आ जा रे की धोनी थी ना, तो उससे ऐसा लगता है कि कुछ जगहें भी आपको बुलाती हैं। मतलब बहुत सारी जगहें हो तो आप जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ जगह जो होती हैं आपके दिल में बहुत खास जगह रखती हैं। तो वहाँ जाने का भी प्लान आप बना सकते हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में। वो कौन सी जगह हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो आप भली भांति जानते हैं। वैसे अगर मुझसे आप पूछें कि गर्मियों की छुट्टियाँ जब पड़ती थी स्कूल की, तो क्या करता था मैं, तो मुझे अक्सर ये होता था कि प्लान तो कई होते थे, लेकिन एक प्लान जो कभी भी टस से मस नहीं होता था, वो ये होता था कि गांवों की तरफ जाएं, वहाँ जाएं, वहाँ पर जो जीवन है उसको करीब से महसूस करें, वहाँ के लोगों से मिले जुलें। और बहुत सारे ऐसे काम, जैसे बाग में आम का सीजन है तो आम जो है कच्चे आम भी खाएं, पक्के आम भी खाएं। इसके अलावा अगर आसपास कहीं नदी है तो नदी के किनारे भी जाना बहुत एक कमाल का अनुभव होता है। बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं वहाँ पर। खासकर जो बच्चे हैं, अगर माता पिता की देख रेख में या फिर बड़ों की देख रेख में करें, तो वहाँ से भी बहुत कुछ वो चीज़ें समझते हैं, सीखते हैं। अब बात करें अगर हम पेरेंट्स की, अभिभावकों की, तो अक्सर माता पिता सोचते हैं कि छुट्टियों में बच्चों को अगली क्लास की करवा देनी चाहिए तैयारी। और तैयारी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के साथ समय बिताना। कभी शाम को साथ में टहलना, कभी कैरम खेलना, या कभी पुराने किस्से सुनाना। ये छोटी छोटी बातें बच्चों के मन में जीवन भर रहती हैं। कई बार बच्चे महंगे खिलौनों से नहीं, बल्कि माता पिता के साथ बिताए गए समय से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और ये न सिर्फ बच्चों को खुशी देता है, बल्कि पेरेंट्स को भी उतनी ही खुशी देता है। क्योंकि आजकल की जिंदगी में जितना हम तमाम चीजों में उलझे हुए होते हैं ना, उसमें ये एक फुर्सत के पल होते हैं हमारे पास, जब हम अपनों के साथ समय बिताते हैं और उन पलों को एंजॉय भी करते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.care.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मंगल भवन मंगल हारी।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है आशियाना, मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों को कैसे बनाएं और भी खास। अगर आपकी कुछ प्लानिंग्स है पहले से तो वो तो चल ही रही है, लेकिन कुछ और भी चीजें निकल कर आती है ना जब हम और आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। वैसे जब हम गर्मियों की छुट्टियों की बात करते हैं तो छुट्टियों का नाम ही सुन के अच्छा लगता है कि वाह क्या बात है, कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो ऐसा मिलने वाला है हमें जो हम बहुत दिन से चाहते थे। यानी कि कुछ फुर्सत के पल, अपनों के साथ बिताए जाने वाले पल, कुछ ऐसा सोचते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, हमारे आसपास अगर हम देखें तो ऐसी घटित हो रही हैं कि हम अपनों के साथ हैं लेकिन फिर भी लगता है कि क्या वाकई में हम अपने के साथ हैं। और उनमें से एक चीज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम मोबाइल या स्क्रीन टाइम देते हैं तो उसमें लगता है कई बार कि यूँ तो शारीरिक रूप से हम साथ में ही हैं लेकिन मानसिक रूप से शायद हम साथ में नहीं हैं, बल्कि ज़्यादा समय हमारा जो है स्क्रीन पर ही बीत रहा है। तो ऐसे में आजकल कई बच्चे भी हैं छुट्टियों का आधा समय जो है मोबाइल में गुजार देते हैं। लेकिन अगर परिवार मिलकर प्लान करे, कुछ समय ऐसा बनाए, कुछ नियम ऐसे बनाए कि मोबाइल से और स्क्रीन टाइम से कम मुलाकात हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे रात का खाना बिना मोबाइल के खाना, या फिर रोज़ एक घंटा आउटडोर खेलना। एक घंटा क्यों, एक घंटे से तो कुछ अच्छा लगता नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा माहौल पूरा बदल देता है जब पूरा परिवार छत पर बैठकर, गर्मियों में खासतौर पर अगर हम बात करें, बातें कर रहा हो, हंस रहा हो, तो ये है ना असली छुट्टियाँ। और ये जो फुर्सत के पल होते हैं वो हमें हमेशा याद आते हैं। और ऐसे ही फुर्सत के पलों की तो हम कल्पना करते हैं कि इन गर्मियों में जब हम बिताते हैं अपने अपनों के साथ, तो ऐसे ही पल तो हम चाहते हैं। तो ऐसे ही पलों को ढूंढना, ऐसे ही पलों को बनाना, ये हमारा काम है।

दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारी यादों में रहते हैं, जैसे ये वाला गाना। क्या कमाल की फिल्म थी और क्या कमाल का ये गीत था, और हम अक्सर इसको गुनगुनाते हैं। और इस गीत के जब गहराई में हम जाते हैं तो आभास होता है एक जिम्मेदारी का, कि जब हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर बहुत सारी कामयाबियां हमें मिलने वाली हैं, बहुत सारी सफलताएं हम अर्जित करने वाले हैं, तो उससे पहले जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हमें अपने जो दायित्व हैं उनका भी तो निर्वहन करना होता है, अपने कार्यों को अच्छे से करना होता है, तभी तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। तो गर्मी की जो छुट्टियाँ हैं उनके साथ अगर हम इस बात को जोड़ें तो बच्चों को भी ये जिम्मेदारी सिखाने का समय है। जैसे कि अगर माँ ये कहें कि आज पौधों पे पानी डालने की जिम्मेदारी तुम्हारी, या पापा कहें कि चलो आज घर के लिए सामान साथ में खरीदते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी जो जिम्मेदारियां हैं वो बच्चों में आत्मनिर्भरता लाती हैं। साथ ही पानी बचाना, पेड़ लगाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना जैसी बातें भी इन्हीं दिनों में आसानी से सिखाई जा सकती हैं। वैसे एक चीज़ और है, एक हमारे साथी ने अभी एक हमारे पास व्हाट्सएप भेजा और उसमें उन्होंने ऐसा कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन

उन्होंने ये एक YouTube का लिंक भेजा और उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे फ्री ट्यूशंस कोई दे रहा है और उससे बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है। हालांकि मैं इस पूरे लिंक को खोलकर तो नहीं देख सका, लेकिन हाँ, ये एक अच्छा विकल्प है कि जैसे हम लोग हर अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, हम सभी लोग, और हमारे जो एक कौशल है हमारे अंदर, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, कुछ वो बहुत से लोगों के लिए खास हो सकती है जब हम उनका मार्गदर्शन करें, जब हम उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, कुछ ऐसे टिप्स दें जिससे वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। खासकर जब हम कहीं जाते हैं और वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, वो बच्चे देखते हैं जिनके अंदर बहुत सी प्रतिभाएँ हैं लेकिन उनको सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, या फिर वो जो करना चाहते हैं, कई बार ये होता है कि एक छोटा सा एक कोई किसी के शब्द जो है ना किसी के लिए बहुत बड़ा एक काम करते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को पहचानना, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये सब भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और जब हम पीछे मुड़कर अपनी चीज़ों को देखते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या खास किया, कैसे अपने समय को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, तो फिर हमारे मन को अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हाँ, हमने कुछ ऐसा काम किया है जो न सिर्फ हमारे मन को सुकून दे रहा है बल्कि और लोगों की भी ज़िंदगी में एक रोशनी लाने का काम कर रहा है, और फिर हमारा दिल ऐसे पलों को ढूंढता भी है।

जी हाँ, ये फुर्सत के जो पल हैं वो आपको गर्मियों की छुट्टियों में मिल सकते हैं। और जैसे इस गाने में सर्दी हो या गर्मी हो, सभी का जिक्र किया उन्होंने कि क्या प्लान कर सकते हैं आप। तो अभी तो हम गर्मियों की छुट्टियों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सर्दियों की छुट्टियों का भी प्लान जो है थोड़ा सा उससे आइडिया ले सकते हैं। फिलहाल हम आपको आइडिया दे देते हैं कि अगले कुछ घंटों में आप FM रेनबो पर कौन कौन से प्रोग्राम सुनने वाले हैं। तो आपसे थोड़ी देर बाद यानी कि 3 बजे से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में आज का जो कार्यक्रम है वो है स्पेशल ऑन नेशनल डेंगू डे। और इसमें एक्सपर्ट हैं डॉक्टर SK रसानिया, जो कि डायरेक्टर हैं प्रोफेसर LHMC नई दिल्ली में। इनसे बातचीत आप सुन पाएंगे। और उसके बाद 4:05 से होगा कार्यक्रम जिसका नाम है अल्फाजन लेट्स डिटॉक्स। इसमें मैं राजेश आपके साथ होऊंगा। और 5:05 से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम जिसका नाम है सिटी लाइट्स। और शहर की तमाम हलचलों, तमाम गतिविधियों को समेट कर आप तक पहुंचेंगे मनीष आजाद। इसके बाद 6:05 से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आप अपने संदेश भेज सकते हैं और आपके संदेशों को आपके अपनों तक पहुंचाने का काम करेंगे निखिल वर्मा। तो एक बार फिर से अपने विषय पर वापस लौटते हैं, और हमने बात की आज के प्रोग्राम में कि किस तरह से गर्मियों की छुट्टियों को हम खास बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं खास। तो गर्मियों की छुट्टियां केवल आराम का समय नहीं है, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने, नई बातें सीखने और खुशियां बांटने का भी ये एक मौका देती है। अगर स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथी, छोटे बच्चे जो हैं, वो उत्साह के साथ कुछ नया सीखे, और जो पेरेंट्स हैं प्यार और समझदारी के साथ उनका साथ दें, तो ये छुट्टियाँ सचमुच जीवन की सबसे खूबसूरत याद बन सकती है। तो चलिए, क्यों ना हम नई यादें बनाएं और इन छुट्टियों को और भी खास बनाएं। चलते चलते ये गीत आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, सुन रहे हैं आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रागबन 103 मेगाहर्ट्ज पर वेस्टर्न म्यूजिक, आपके दोस्त RJ वेरोनिका के साथ। और जी हाँ, अगर आपको भी हमें मैसेजेस लिखने हैं तो प्लीज इस नंबर पर भेज दीजिए 9436805333। जानकर खुशी होगी कि कोई तो है हमारा साथ देने के लिए, राइट? सो यस, क्विकली गिव मी योर मैसेजेस सो दैट आई नो व्हाट्स हैपनिंग, ऑलराइट? और यस माय डियर लिसनर्स, कभी कभी हमारी जिंदगी में बस एक इंसान काफी होता है ना, जो हर मुश्किल वक्त में आप हमारे साथ दे दें। और जैसे ही वक्त बदलता है या मौसम बदलता है, कुछ लोग बदल जाते हैं, पर कोई तो रह जाता है हमारे साथ हमेशा, हमारे साया बनकर, राइट? सो सुनिए टाइम आफ्टर टाइम बाय सिंडी लोपा।

जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, चलो मैं आपका मूड थोड़ा सा हल्का और फील गुड बना देती हूँ, है ना? बिकॉज आई बिलीव इवनिंग्स आर बेटर व्हेन म्यूजिक मेक्स यू स्माइल अ लिटिल, राइट? सो हियर इज अ स्वीट वन कमिंग योर वे. दिस इज बेबी व्हाट अबाउट यू.

प्रोग्राम थे आपको हुनी वो अपना लोग की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म पर आसे टाइटल सॉन्ग तो हुनी वो राघव और तनिष बख्शी और आशीष कौर का वास्ते से और एक गीत करने लिखी गिना पता है से एंड तालीला जमीर मुकुकचुंग उंगमा परा

निसेको कोइमा विलेज प्रहताई लिखिगिन बतासे ताई गना मंग्या से केहे दो जराह गना तु बजाई दिवी को से जाने कहां से आई है इति फिल्म परा वेल इतिया हुनी बोल रशीद अली लेका वासे फिल्म से जाने कहां से आई है इतु गना तु डेडिकेट आरताई तु गना सब के डेडिकेट कुरी दिया से तु एवरीवन को इना लिखिया से निसेको कोइमा विलेज परा लिखि दिसे सो थैंक यू सो मच निसेको फॉर राइटिंग

लगता है गाना मांगिए से देवदास फिल्म पर आ गाना लगाना मैसे डोला रे डोला ताइटु बजाय देवी को आसे अब ताइटु गाना डेडिकेट करी दिया से ऑल आर्जेस ऑफ आकाशवाणी को हिमा मिनाल अहमद रोकोविले मेटा अमल बिमल आरो सबके को इना लिखी ना पता आसे सो थैंक यू सो मच लिखी ना पता दिया कारने तो लिसनर्स का नित्या हुनी वो कविता कृष्णमूर्ति श्रेया घोषाल और के लगा हुआ से फिल्म आसे देवदास

कलकत्ता चन्द्रशेखर टाइ लेखिन पठा आछे गाना फुल और अंगर एतु फिल्म तो नाय आमी गाना ट्वीट करने मय आई एम सो सॉरी बट नेक्स्ट को मैसेज टी जाय जासे एरे लिखि गाना पठा आछे धड़कन फिल्म पर तुम दिल की धड़कन में इतु गाना तो बजाय देवी को आछे एंड दिस इज आवर रेगुलर लिसनर्स दुर्गेश नगनपुरी राजेश्याम नगनपुरी वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश आरो सुरेश कुमार दक्षे तेखने लिखी इन पते आसे तो लिसनर्स का नीति हनीब कुमार शानुलका वास्ते फिल्म आसे धड़कन

प्रोग्राम त्यो को हुने भयो मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म पर आसे उदित नारायण लगा वस्ते और एक गीत करण ने लिखी ना पता से बाइकोन मुंडा डिस्ट्रिक्ट से चराई दियो सोनाटी असम परा और टाइट गाना डेडिकेट कर दिया से अमल बसुमतरी बिमल बसुमतरी दुर्गेश नगनपुरी जोगिंद्र रोंगपी रमेश पात्रो रुनु पात्रो लाकी अंजलि बसुमतरी सुनीता बसुमतरी रघुवीर मेहता बीरेन हंसे चुबाकी जामिर एंड ऑल लिसनर्स आरजेस खान के कोई ना लिखिया से वेल थैंक यू सो मच भाईकोन मुंडा लिखी गिना पठाई दिया करने

प्यार करके देखो फिल्म तो आसे किंतु इतु गाना तो नाइ सो आई एम सो सॉरी अपनी अन बियाना पावे दूसरा दिन थे आपको बजाय दिवो दूसरा फिल्म लिखीना बताइबी किंतु इतिया टाइम भी हो जासे लास्ट गाना बजा बोल इतु कने लास्ट गाना इतिया इतु लिखी गिना पता से देवाशीष हजारिका डिस्ट्रिक्ट आसे मजुली ताई मजुली आसाम पर लिखी गिना पता आसे आप तो लिखे आसे गाना आसे रावन फिल्म पर बजाय दिवी को आसे गाना लगा नाम आसे क्रिमिनल तो लिसनर्स कान इतिया हुनिबो एकोन विशाल दत्तलानी आरो श्रुति पाठक लका वास्ते आसे फिल्म आसे रावन आरो तु गीत लगते प्रोग्राम तु स्टेज कुरिया होबो किन्तु हमय 7 बजी होआ लके अपनि गान हुनि होबो उरा एकेडेमी प्रोग्राम दे स्पोंसर्ड प्रोग्राम आसे तो हुनि गिना एन्जॉय करबि आरो थैंक यू सो मच अपनि गान सब लिखि गिना पठाइ दिया कारणे सब लादु बजाओ पारना जे किन्तु अपनि गान बियाना पाबि नेक्स्ट टाइम बि आसे इतु कारणे नेक्स्ट टाइम दे बजाइ दिबो आरो मय आको अपनी गान के लॉक करे हो दैट इज एट 9:30 विथ मोर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स दैट इज पुरानी गीत आरो 7 बजे 10 मिनट आरो 7 बजे 20 मिनट ते अपनी गान हुनिया होबो नागामिस आरो इंग्रजी ते रीजनल खबर ता पछिते 7 बजे 30 मिनट पर आसे वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम बिफोर दैट स्पोर्ट्स राउंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम आसे इटु पिसिते अपनी गान वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम हुनिबो सो स्टे ट्यून एंड विशिंग यू वंस अगेन wishing you all once again a very good evening and stay safe and have a wonderful evening.

0: Qatar asir HIV agi shirang atam timmetan kumzika asir wazika ayutse tintipa lir.
1: Iba dimzang atanga HIV kada alir mazang mishim mazir daktar. Iba dan maba inyakpa shisalyuk pushiba tamang anapalopa asir nupodam nandakpa aja kasasa maung kaang agatse.
0: Tim tim tenuk tangba kejap maliba nimaka yang uti arum.
1: Iba dimetet seusang ya Nagaland State AIDS Control Society atanga sangdonga.
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM ट्रगबैन 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे वेरोनिका। आपके साथ लेकर आई हूँ एक प्यारा सा प्लेलिस्ट जहाँ पर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा खुल जाइए, थोड़ा मस्ती कीजिए, क्योंकि आज सैटरडे है यार। और यू नो कल के बाद फिर मंडे आएगा, उसके बाद हमारे जो पूरे हफ्ते थकान भरा होगा, है ना। थकान भरा ही तो होता है हमारा जो हफ्ता बीतता है, तो उस पूरे हफ्ते की थकान के बाद बस म्यूज़िक चाहिए होता है। ऑलराइट, मेरे लिए तो म्यूज़िक बहुत अच्छी तरह से काम करता है, पता नहीं आप लोगों के लिए कैसा होता है, लेकिन थोड़ी फ्रीडम और अच्छे वाइब्स। और अभी अभी अपने आपने सुना पार्टी रॉक एंथम, प्योर पार्टी एनर्जी, राइट। और यस, इसी पार्टी वाइब को और पावरफुल बनाते हैं, because this next track is all about strength, energy and rising above everything. So please guys, join me, and if you feel like tapping your feet, please do so, all right? Or yes, we have our first message. It writes, I am Shushu from Mallory. Tonight songs are chakas. All right, chill. Shushu, thank you so much for writing in, and some of you are sending me request messages to play your song. Hulubi, I am really sorry. Aji do request message na ho. Itia request la program na hoy. That's why please bear with me. I'm gonna be playing you some good music, alright? So get ready to dance with me. This is Titanium.

ऑलराइट दोस्तों, इसी हाई एनर्जी वाइब के साथ सैटरडे नाइट का पार्टी यही रैप करती हूँ। बहुत बहुत उदास हूँ मैं अभी, मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें राइट। आज की रात बैज बीट्स और आप सबकी एनर्जी ने स्टूडियो को भी डांस फ्लोर बना ही दिया। मैं हूँ आरजे वेरोनिका ऑन एफएम ट्रगमैन आकाशवाणी कोहिमा, सेइंग थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, सिंगिंग अलोंग एंड मेकिंग दिस नाइट सुपर सुपर डुपर हिट। अपना वीकेंड एन्जॉय कीजिए, ओके, सेफ रहिए और डोंट फॉरगेट, खुश रहिए और याद रखिए, गुड म्यूजिक एंड गुड वाइब्स नेवर नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, सो स्टे इन स्टाइल। गुड नाइट नागालैंड, गुड नाइट इंडिया एंड कीप द म्यूजिक अलाइव। इसके बाद आप सुनेंगे नेशनल न्यूज इन हिंदी, नेशनल न्यूज इन इंग्लिश एंड स्पॉटलाइट। फिर मिलेंगे, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: में कैसा है मजा, ओ हो तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी।
1: कैसे?
0: दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।